0: Wonderful, wonderful music there. This is WTJU Charlottesville on 91.1 FM and worldwide at WTJU.net. You're listening to Silk Roads and I'm DJ Skadoosh. I have an amazing music in store for you. So without further ado, we'll start with a song called Ajnabi Mujhko Itna Bata, sung by Asha Bhosle, Udit Narayan.
1: जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।